0: पीछे करवा।
1: हेलो हाँ भाई, जगह पे पहुँच गया हूँ लेकिन इनकी से खड़े हुए आगे क्या, और वो पुलिस वाले रेंज वाले खड़े हुए आगे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या है। मैं एक बात करती हूँ, पुलिस वाले की बनी है रेंज वाले खड़े हुए।
2: 정상회담의 문제점에 대해서 항의했습니다. 근데 그때
3: 한반도 자위대 진출 용인 악사 추진 즉각 중단하라. 중단하라.